कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मेहनत

से विद्यार्थियों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्य में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।

पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला जिसकी लागू लगन कलाकार हैं गायक अनिल झोरका इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।

quel hoy es el desayuno favorito dove ti sei trovato dove ti sei trovato per te nella per avere la tua o chiedendo di sapere सचिन समिति के अंतर्गत सुनेगा दोस्ती बिना जज सुना कहानी पद्मश्री भूरी बाई मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार भूरी बाई के बारे में सुनेगा और मुझे कुछ कहना है किस्तों पर खरीदारी

से पैतालीस मिनट पर इंद्र धनुष के अंतर्गत इनसे मिले। इसके अंतर्गत चले गए विधान वादक अनिकेत बुंदीवास से जयमुन के पास श्रीकर

मिशन है पुरुषोत्तम दारभेकर का। 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार, 10 बजे चाहिए 10:30 पर ढलती जाएगा और रात 11 बजे धर्मी संगीत। आज के लिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का

speranza ed il

तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही है। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते।

तथा कुल गुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर सीता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

0: नमस्कार और विविध भारती के स्टूडियो में एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं अनूप जी आपका।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: गिरे के किले के उधर से धाए, गिरे से घूमने लट पटाए, धाए वहाँ की गोद ले,

0: इन रचनाओं को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। अपने शुरू से वे ऐसा चित्र खींचते हैं कि श्री राम बाल रूप में आंखों के सामने उपस्थित हो जाते हैं। अनुज जी, हमें इस भक्ति रचना के बारे में बताइए जिसका हमने चित्र किया।
1: शुभ के समय रामचंद्र सबसे पहले पंडित देवी पलुस्कर जी ने गाया था और ऐसा गाया था कि अब सब लोग उसे गाना चाहते हैं, लेकिन वैसा कोई नहीं गा सकता, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से गाया, जिस प्रेम से गाया, वो उनका एक कमाल था, कोई नहीं कर सकता वैसे। उसके बाद उस भजन को मेरे पिताजी ने बहुत गाया और बहुत प्रसिद्ध किया, क्योंकि उन्होंने कुछ अपना रंग उसमें जोड़ा। उसके बाद लता मंगेशकर जी ने उसे रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा गाया। मेरे पिताजी के साथ साथ मैंने भी गाना शुरू कर दिया था और मैंने भी कुछ अपने ढंग इसमें डाले हैं, जिससे कि भजन औरों से बेहतर तो नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा अलग जरूर लगता है।

0: साथ साथ ही मैंने भी गाना शुरू कर दिया था और मैंने भी कुछ अपने ढंग इसमें डाले हैं जिससे कि भजन औरों से बेहतर तो नहीं लगता है लेकिन थोड़ा अलग जरूर लगता है।
1: घूमती चलत राम

सीख रहे हैं, करने का प्रयास करते हैं, गिर जाते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं, कोई उठा देता है, फिर चलने लगते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो मेरा प्रयास है कि वो सुंदर दृश्य

चेहरे की तुलना किसी चीज से करना चाहते हैं। और कोई कभी होता तो कह देता कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जैसे सूर्य है या जैसे चंद्रमा है या जैसे गुलाब का फूल है, कमल का फूल है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जो योग्य हो कि उसकी तुलना भगवान राम के चेहरे से हो।

0: सुंदर सचमुच हम आज सुबह करके बैठे थे और इस तरह से आपने शब्द चित्र उकेरा आंखों के सामने उपस्थित हो गए थे श्री राम जी। अनूप जी श्री राम भजन आपने खूब गाए हैं और खूब श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से उनकी कौन सी महिमा गाने में ज्यादा आनंद आता है, उनके किस रूप को आप ज्यादा गाना पसंद करते हैं?
1: भगवान राम के कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जैसे शबरी है, जैसे केवट है, तो केवट का एक भजन है मैं बहुत गाता हूँ, तो यदि आप अनुमति दें तो मैं वो भजन गाता
0: हूँ। बहुत अच्छा लगेगा।
1: राग गुजरी तोड़ी के रंग को लेकर इसे कंपोज किया गया है।

कुछ मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन केवट बोला, प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते,

कृषि उत्सव सुनना भूलिए लघुरूपक कृष्णा वंदे मातरम एक जय घोष।

ईश्वर की आवाज में शैलेंद्र का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। पतिता फिल्म से संगीत शंकर जयकिशन का था।

आवाजें, धुनों की तनों की परवाह।

कलश मजबूत की आवाजों में परछाई से उनका गीत अभी आप सुन रहे थे। मूल विश्व गीत कार्यक्रम मूल लखनवी ने इस गीत को लिखा था और श्री रामचंद्र ने इस गीत की धुन बनाई थी। मूल विश्व गीत कार्यक्रम इस समय आप

जी की भरतराज की रचना आपने सुनी और हंसराज कहे का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आपका वही पिछले गीत कार्यक्रम यही समाप्त करने की इजाजत

0: दिली धड़कन देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे कार्यक्रम हम है रही प्यार के। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।

मेरे फिल्म का नाम इसका गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर मुकेश के आवाज़ थी और संगीतकार थे आर डी वर्मन। मेरी अब सुनिए लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में हाथ की सिखाई फिल्म का

सफाई से उनका गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे। गीत गुलशन बाबरा का था, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश और साथियों की आवाजों में

की कपड़ा और मकान फिल्म का गीत लता मंगेशकर मुकेश के और साथियों की आवाज़ों में आपने अभी सुना। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का हम ही रहे प्यार के कार्यक्रम समाप्त करने

सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA एलएनजी की आपूर्ति की।

प्याज सब्जियां फल खाद्यान्न और तुरंत जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।

2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पेआउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।

person.

convincing, si demandas, si ya pas, si debiti, si

What?

also like I'm good.

meaning. Funny, color, ugly. Who lives inside? Learn to be next.

0: Grooming.
1: I would reserve the LCs that were done here.

que te mande la oportunidad, rúbrica, y

também.

ठाकुर की आवाज में आप सुन रहे थे लुटेरा फिल्म का गीत अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत था। ये थे त्रिलोक कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म की फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज स्वानंद किरकिरे के बोल हैं प्रीतम का संगीत।

0: ci sono le gentile che voi che questa è una
1: अपनी बात कहने का सचिव फोन पर हमसे बताएं अपने दिन की बात और फरमाइए।

इंक्वायरी के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के बारे में।

फिर स्वागत और आपको अब सुना रहे हैं बॉर्डर टू से निकला ये गाना। विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की

इंद्रधनुष पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलने का हुक्म आज सुनेंगे। इसके अंतर्गत गिटार वादक अनिकेत गुंडेवाल से जयंत तो पात्रीकर के बातचीत करने का भाग दूसरा होगा। आज प्रस्तुत करता है तेजस्वी

una particularidad, no, muchísimas gracias a la gente. Sí,

प्रॉब्लम कभी कभी आप सुन रहे थे अमरनाथ सिंह और साथ में की आवाज है ना जैसलीन रॉयल का ये संगीतमय से गीत के साथ ही आज का प्रमुख कार्यक्रम समाप्त करने के लिए इजाजत सविता सिंह को नमस्कार।

पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजेश

मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रहेगी। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को निशा भी पूरी करती रही है। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शन के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979

के परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। इस फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बरगाटिया हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों के साथ फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बरगाटिया सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी

वचन उनका वचन करना संघ अभिनित इस संघ के राजकुमार बरजातिया सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बरजातिया ने तपस्या फिल्म में काम किया। एक रोमांचिक ड्रामा फिल्म इस फिल्म का निर्देशन अमित गांगुली ने किया और निर्माता थे ताराचंद बरजातिया। ये फिल्म अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशा पूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में राशि परीक्षित सहनी ललिता पवार ने मुख्य भूमिका में अदा की थी। संगीत रविंद्र जैन का था। इस फिल्म में 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राशि। 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। 1976 की पिछले 1980 की बैकअप 1984 की सारांश और 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में भी

किए और वैश्विक प्रोडक्शन के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई यह फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला। इस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार, संजय पुरस्कार और अन्य अवार्ड में

किया अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। ये फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दर्शक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इससे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन पर कनाडा के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर

अदालत 2003 की फिल्म माय प्रेम की दीवानी हूँ जो चित्तौर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राजकीय प्रोडक्शन की इस फिल्म को जिस

ਸਿਰੇ ਕਰ ਸਾਡੀ ਤਰਕੀਬ ਸਫਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ।

दिन भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म फिल्म उस वक्त की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रतन धन्यवाद।

के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया है। ये राष्ट्रीय प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म है।

को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपने समय से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चीन ही जाएंगी। और जब भी दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली और निर्माण कला के

मैंने चीज को बैठे भाई सुनाई के लगा समस्त जिले वास्ते से अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 में के अंतर्गत अब आप 100 गणना सेल्फ इनोमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर भविष्य में स्कूल अस्पताल सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुँच किया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल जाकर 15 मई 2026 तक 100 गणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारे पास हिस्सा है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सुखद योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बाकी बात

0: him uncover. Come on, next time, Akashvani Godjewelry.in. Naya Bharat, next Akashvani.
1: अपने डिवाइस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग।

sam 24 saati sonni

शुक्रिया आपने फोन किया है और अब हम हाजिर है लेकर कार्यक्रम का शीर्ष। इतने वजन सुनिए जगदीप सिंह के नागीर बनारसी के लिए नृत्य हुए गजल। ये सुनिए मौसिकी जगदीप सिंह की।

आकाश वाणी के निषेध करके विविध भारती केंद्र से हम लेकर हम हाजिर है दोस्तों प्रेरणा गीत कार्यक्रम आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। संगीत एक ऐसी कला है दोस्तों जिसमें संयमित सुख न केवल आवाज को प्राप्त है बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन को भी संयम देते हैं। इसे सुनकर आत्मिक शांति का अनुभव करना काफी सरल है और कई गीत ऐसे हैं जो हमें प्रेरित करते हैं जो किसी भी

उन्हें थे जो जीता वही सिकंदर इसी फिल्म का भी मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और जतिन ललित का संगीत बद्ध किया। सुर बद्ध किया था उदित नारायण, साधना सजम और जतिन ललित ने। जय माता दी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से।

चढ़ाव होते हैं, हमें उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ने का सदैव प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा आगे बढ़ना ही हमें हौसला देता है और मंजिल तक पहुंचाता है।

योगेश की शब्द रचना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में फिल्म थी प्रियतमा और संगीत राजेश रोशन का था। तो जब भी दोस्तों आप अपने जीवन में हताश निराश हो जोश से भरे गीत संगीत जरूर सुनें। तो अब हम प्रेरणादायक गीत के इस कार्यक्रम से हमें इजाजत दें। नमस्कार।

Singapore का ये है व्यवधान की केंद्र श्रोताओं में सुबह के 11 बजे को है FM 100.8 MHz पर आइए जल्दी कार्यक्रम नमस्कार

है, दूसरी बात है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। आज का दिन हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और जागरूक रहने का संदेश देते हैं, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही हर सपने की असली नींव होती है। जिंदगी की असली खूबसूरती हमारे स्वस्थ और खुश रहने पर होती है।

नुकसान पहुंचाता है। अब ये नमक सिर्फ रोज से हमारे शरीर में नहीं पहुंचते हैं बल्कि जंक फूड और बंद फूड के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं। और यहाँ सिर्फ नमक बल्कि वसा, ट्रांस फैट सब कुछ शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं जो ये चीजें बंद भोजन हम करते हैं। तो मामूली से दिखने वाले नमक को मामूली मत समझिए। किसी भी चीज की अच्छी

अपनी हंसने गाने के लिए है। कल दो पल आपको बता दें कि किशोर कुमार की आवाज में आप

find that you can make a host of different memory cards and people objects. योजनाओं का लाभ आपके आप अपने मोबाइल

से परिश्रम का। और अब पलटते हैं पन्ने आज के इतिहास की। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र की इस ऐसी संस्था की जिसका शीर्ष चेहरा गवर्नमेंट है। आज के दिन 1954 में तीन लोकसभा अध्यक्ष श्री जी वी मावलन से ऐतिहासिक घोषणा की भारत और अब लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। यहाँ 1954 से इस तारीख की 14 मई लोकसभा सब

विचार विमर्श करते हैं। युवा मंच है जहाँ भारत की सोच बदलती है, जहाँ हर नागरिक की आवाज विचार और अधिकार बनकर उन चुनिंदा प्रतिनिधियों की है। लोकसभा केवल एक सदन नहीं है श्रोताओं, भारतीय लोकतंत्र की सेवा का आत्मा है। यहाँ बैठने वाले हर प्रतिनिधि द्वारा हर नागरिक हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान किया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम्,

पहले कार्यक्रम में हम ज्यादा मन की बात कर रहे थे क्या है ज्यादा मन का पाठ वो दिन आज के दिन पूर्णिया की तारीख 1908 को राइट ब्रदर्स ने पहली बार अपने अलावा अनेकों की हवाई जहाज से उड़ान साथ में खरीदी।

के सीईओ फाउंडर मार्क जुकरबर्ग थी, तो आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, मार्क जुकरबर्ग दुनिया को फेसबुक प्लेटफॉर्म देने वाले सबसे

पर शहर को लॉन्च किया गया और कुछ ही समय में इसकी पहुंच कोने कोने तक हो गई और दूर से पूरे दूसरे लोगों तक हम अपने फोटोज वीडियोज रील्स पोस्ट

यावर सुनें शैलेंद्र के बोलों को सुरबद्ध किया था शंकर जैसे शनि और फिलहाल दुनिया की सैर से

और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की खपत को कम करें और जितना संभव हो सके सार्वजनिक परिवहन का उपयोग हम करें। हमारे लिए इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो सुधरेगा। वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देने की अपील

हमें खुद समझना होगा कि सीमित संसाधनों का उपयोग जितनी जरूरत हो उतने कम करना चाहिए। कम से कम हमारी थोड़ा परहेज होने करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ईंधन को बचाना तो चाहिए, उनके आरामदायक जीवन के लिए इस मंत्र का दशक लेना है। समझदारी और जीवनशैली समझ कर हम अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल करें तो सरकार को भी कदम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझना मंथन और चिंतन की

कुमार हूँ, उपाय समय के लिए बताओ समस्त जिले वासियों से अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 में के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनोमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर भविष्य में स्कूल अस्पताल सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुँचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। में 15 मई 2026 अक्टूबर है तो खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे लोगों के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बाकी बात

शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज का जन्म हुआ था, जिन्होंने पिता के स्वराज से अपनी प्रजा को संरक्षित करने के क्रम में अपने प्राणों की आहुति दी थी। महान भाषाविद, विद्वान, राजनीतिक नेता और भारतीय धरोहर के मनीषी आचार्य रघुवीर का साथ ही तमिल विद्वान और लेखक चंदासामी कोप्पुसामी, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मराठी कवि वृंदा करंदीकर की

kako se da sami poput sami. और शिक्षा शास्त्री अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर की जोड़ी और भारतीय फिल्म के प्रसिद्ध समाचारों निर्देशक मृणाल सेन का जन्म हुआ आज के दिन 14 मई 1930 को। बंगाली उड़िया तेलुगु और हिंदी फिल्मों में समान रूप से सक्रिय रहे मृणाल सेन भारत में समानांतर सिनेमा के आंदोलन के प्रसिद्ध हैं।

करने हरि भुवन सोम पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्देशक मृणाल सेन को हम नमन करते हैं और उनकी श्रद्धांजलि में ये गीत।

किया गया है। झारखंड के कुछ जिलों में तेज आंधी गर्जन और बारिश की संभावना जताई जा रही है और ऑरेंज मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, खुले मैदान और पेड़ों के नीचे नहीं रुकने और बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। 15 और 16 मई को अन्य जिलों में भी तेज हवा और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह मौसम के रुख में

strumenti quelli per conoscere per ore per il mio trauma molto nella tabba del ragno ogni sono di sette che per me molto imparato e mi ti sono calma che stai vedi. झारखंड के कुछ हिस्सों में मई महीने में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। आपको बता दें कि 14 मई यानी आज का जो मौसम का पूर्वानुमान है राज्य के पूर्वी और उससे सटे मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर गरज और चमक के साथ

with advantages and disadvantages of the

साल पहचान से हरिहरन घनश्याम वासवानी प्रीतम राव संतोष

की वाणी, आकाश वाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक गेट पर हमारे स्टेशन लाइव मन की बात संगीत।

सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज यादों की महफिल में हम याद कर रहे हैं निर्माता निर्देशक राजकुमार भट्टाचार्या को। तो आइए सुनते हैं उनके ही द्वारा रची गई फिल्मों में से फिल्मों के गीत। अगला गीत होगा किसी और फिल्म से। येशुदास की आवाज में रविन्द्र जैन के बोल और रविन्द्र जैन के ही संगीत।

भोसले की आवाज में रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के ही संगीत के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये।

evangelism. Sunlar Seçeni Var.

साथ देते हैं विविध भारती पर। अब सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। निर्माता निर्देशक राजकुमार वड़जात्या जी के द्वारा बनाया गया है यह फिल्म रतन धमकायो फिल्म से अन्वेषा विनीत सिंह हरजीत कौर शबाब सर्वी और साथियों की आवाज में एकता कामिल के बोल हैं और हिमेश रेशमिया का संगीत है।

राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्यासों की महफिल में आइए सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत गीत। हम आते हैं कौन फिल्म से, लता मंगेशकर, बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज में, रविंद्र वाल के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।

0: Dios considera el tiro para ir a mi casilla. Y ahí dejó de dar sin verdad, sin.
1: Tuvo que anhelar que aquel mejor error de metiendo de sentido. हर रोज दो से तीन बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं और तो और पढ़ाई करियर इंटरनेट सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती है।
0: अच्छा तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा।
1: हाँ क्यों नहीं, सिखेंगे नहीं सिखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार

भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल। बड़ी खूबसूरती से हमने सजाया ऐसे सुंदर गीतों के साथ में राजकुमार बड़जात्या के द्वारा बनाई गई फिल्मों के गीतों को हम सुन रहे हैं। संगीत कुमार की आवाज़ में संगीत के साथ

शोधित नारायण श्रेया घोषाल की आवाज में रविन्द्र जैन के बोल और रविन्द्र जैन के संगीत के साथ हम सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल में। और इसी कार्यक्रम में हम सुनने वाले हैं एक और बहुत खूबसूरत सा नगमा जिसे गाया शान ने उस

शोधित नारायण श्रेया घोषाल की आवाज में रविन्द्र जयंती बोल और रविन्द्र जयंती संगीत के साथ हम सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल में। और इसी कार्यक्रम में हम सुनने वाले हैं एक और बहुत खूबसूरत सा नगमा जिसे गाया शान ने और श्रेया घोषाल ने रविन्द्र जयंती बोल और उनके संगीत के साथ, एक विवाह ऐसा भी।

us, she will hold us. What is he doing to us?

सबके साथ पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ श्रोताओं ने इस इबारत को ना पढ़ा क्योंकि वो फेसबुक पर ना हो। तो चलिए चलते हैं उस इबारत की ओर कि हमने जो इबारत आपको भेजी है वो ऐसी है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कहा कि कौन पकड़ में नहीं आता। तभी उसी ने मुस्कुरा कर कहा, आपकी पैर बहुत हसीन है। तो मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत में कला होती है लेकिन मोहब्बत की हाथ थक जाता है, कभी दिल को भी चोट लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि कितने अपने मिले और कितने पराए, या कहूँ कि जिंदगी की भीड़ में जब लोग पूछते हैं कितने आदमी थे, तब अपने अपने हौसले गिनकर बता देती हूँ। और कभी जीवन में लोग नहीं मिलते हैं तो हम लोग वापस क्या करते हैं, कई बार क्यों करते हैं पता नहीं। पता है हमारे श्रोता लिखते हैं इबारत के अनुरूप संभावित गाने हैं मेहू डॉन और उन्होंने कई सारे गानों के बारे में लिखा है। चलिए हम देखते हैं इनमें से क्या हो सकता है। हाँ, आपने इस बात तो बहुत अच्छी पकड़ी, हमारे श्रोता ने तो 15-20 गाने सुनकर इतनी बढ़िया बात है ना, कितनी मेहनत की होगी उसके लिए आपको धन्यवाद है। हमारे श्रोता लिखते हैं हम जहाँ से खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी। आज इबारत में मुझे डॉन से नजर आ रही है। अच्छा, आपकी पसंद भी आपने हमको बता दी, बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी ये खूबसूरत इत्तेफाक है कि हमसे हमारे इसका अंदाज पूछ रहे हैं और हमने भी हंसकर कह दिया रिश्तों में तो इंसान के साथ लगते हैं। तभी पलट कर उन्होंने सादगी से कहा, सबको अच्छे डर नहीं लगता, सब प्यार से लगता है। उस पर समझ में आया मोहब्बत में तकरार भी एक अलग सुकून देती है, मगर इस दिल की दहलीज का कदम रखना इतना आसान नहीं है। यहाँ कभी जज्बात कांच की तरह दिखते हैं, कभी खामोशी भी जान ले लेती है। क्या खूबसूरत बातें आपने लिखी हैं। और जब इतना अच्छा लिखा है तो हम चलते हैं हमारे उसी इबारत की तरफ। और हमने सबसे पहले लिखा है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कह दिया डॉन को पकड़ना डॉन पकड़ने नहीं आता। और इसी इबारत से अगर हम समझ लें तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये गीत यहाँ पर होने वाला है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। ये तो मैं मेरी पसंद से आपको गीत सुना दूंगी और हो सकता है यही मांग आपकी भी हो, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो फिल्मों के डायलॉग्स होते हैं उनमें से कौन सा डायलॉग है जिसे बहुत हर्ष में आप प्रयोग किया करते हैं? जल्दी से मुझे संदेश भेजिएगा, ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसका उपयोग आप बहुत बार करते हैं और लोग उस बात पर आपके उस अंदाज पर खुश भी हो जाते हैं? तो जल्दी से ये बात हमें बताएं। और हमारे श्रोताओं ने इस बारे में लिखा है, एक एक अलग अलग बातें लिखी हुई हैं डायलॉग के बारे में लिखा है। तो चलिए हम ये गीत बढ़िया सा सुनते हैं और अगर आपकी पसंद का है तो मैं इस पर धन्यवाद देती हूँ कि आपकी और हमारी पसंद मिलती है।

पेट्रोल डीजल की कमी आयात होने के चलते कम से कम डीजल पेट्रोल काम कर जो आवश्यक आवश्यकता है उसी उसका उपयोग करने का काम उनके साथ मिला है उसमें भारी कमी की गई है तो गाड़ियाँ

Qua si vedeva

0: हॉस्पिटल को आगे बढ़ाना और एबीडीएम में झारखंड और रांची सदर अस्पताल भी काफी आगे बढ़े हैं। राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम हुआ, इसकी चर्चा हुई कि यहाँ काफी अच्छा काम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हो रहा है।
1: स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2026 के तहत केंद्र

तारीख की समाचार है। हम बहुत

koristi isti puruš se man se parmeti koji se stari ili parle to mohobbat ki si bahi sundata ki tari ki hata nahi jaya sakti balki mohobbat ki si tari se jati hai aur ek bahut khoobsurat sa dialogue hai jo hum bachpan se hi sunte aa rahe hain Rajkumar ka bahutreen samvad hai ki aapke pair bahut achhe hain Rajkumar ji mera bataiye aapke pair bahut achhe hain hai zameen par mat rakhiye mere ho jayenge ये डायलॉग काफी पसंद का है और इसका ही ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हो सकता है ये आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों का मिलन हो रहा हो। बताइएगा अगर आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों की पसंद मिल गई है तो जरूर हमें सूचना दीजिएगा और इतना सा बस बता दीजिएगा कि इस गीत के गीतकार कौन है और साथ में ये बताइएगा जो प्रश्न में चल रहा है उसको तो चलने ही दीजिए कि आपका पसंदीदा डायलॉग कौन सा है और उसके साथ ये बताइएगा कि कभी कोई डायलॉग किसी मित्र ने किसी शिक्षक ने कभी मास्टर ने आपको अंजाने में सुना दिया हो और आप हर तक के लोटपोट हो गए हो जहाँ पर आपकी किताब दिख रही थी।

की आवाज में गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं से कहा जा चुका है, बहुत अच्छे से उन्होंने बोल दिया है। गुलाम मोहम्मद ने कितना खूबसूरत संगीत दिया है ना। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रेलगाड़ी की सीटी आकर्षण का केंद्र है, गाने के अंत में सुनाई देती है। हाँ, हमने भी सुनी इसी हेडफोन के जरिए भारतीय के स्टूडियो से, आपने भी सुनी होगी अपने अपने रेडियो हैंडसेट पर। और हमारे श्रोताओं को बड़ा पसंद आ रहा है ये गीत, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, गीत रूह को छू लेने वाला एक एहसास है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो जब हमारे पसंद के गीत हमारे श्रोता लिखते हैं, सभी आखिरी सभी इंतजार आके सभी होगी मुख्तर भी इंतजार मेरे साथ जल्दी जल्दी का भैया शेर उठाया है आपने गीत से। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमने पूछा था आपसे कि आपको कौन कौन सा डायलॉग है जो आपके घर वाले आपको देते हैं तो आप मार खाते खाते या दांत खाते खाते हंसने लगते हैं। हमारी श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती है, कभी कभी जब मारने लगती है तो मैं कह देती हूँ डॉन को ना, कभी दर्द नहीं होता। मम्मी हंसती है, फिर क्या ना एक और डायलॉग बोल देती हूँ, हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर हम और उनको और उनकी माँ दोनों बहुत हंसते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपकी माँ आपके साथ आपको बहुत पिटाई करती है और बहुत सारा प्यार भी करती है, इन दोनों को संभाल कर रखिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी लिखी है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आखिर इस सुरीले सफर में डायलॉग की बात हो रही है, तो उन्हें जो डायलॉग पसंद है उन्होंने लिखे, चल तनु बसंती आज, चल धनो, यहाँ तनु नहीं है धनो होना चाहिए, चल धनो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, तुम्हारा क्या नाम है बसंती, मैं आज मुझे के लिए बसंती हूँ, कहा मेरे पास गाड़ी है बनना चाहता है, तुम्हारे पास क्या, मेरे पास माँ है, आओ महारथी आओ, ये सारे डायलॉग ये बहुत प्यार से बोलते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बोला कि आज का मेरा खुद का डायलॉग है कि अपुन सफर के साथ सफर यानी डबल सफर करता है, हम विविध भारती मुंबई के सुरीला सफर के साथ साथ ट्रेन के सफर का भी आनंद ले रहे हैं, आपकी यात्रा शुभ हो, हम ये बात आपसे कहते हैं। और हमारे श्रोता लिखती हैं कि हमारी आदत है, शांति तो नहीं जानती ये बोलने के, हाँ ये बड़े प्यारे से डायलॉग थे ना, मीठे मीठे सुरीले सुरीले। और हमारे श्रोताओं ने जब बहुत सारे डायलॉग्स के बारे में लिखा, तो हमारे एक श्रोता ने तो ढेर सारे सारे डायलॉग भी पहचान करके लिखे, और उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके सारे डायलॉग अभी हमें बोल सकते। हमारे श्रोता लिखते हिंदी फिल्म का संवाद भी तक बोलाना चाहे तो हम खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है तो ये आपका घर नहीं। और हमारे श्रोता कहते हैं, अक्सर मेरे मित्र पूछते हैं कि आपके स्वस्थ और कुछ रहने का राज्य, उनसे मेरा यही कहना है, मैं विविध भारती सुनता रहूँ, सुनते रहिए ये डायलॉग बड़े काम का है। हमारे श्रोता ने लिखा, हमने कल रात को ही प्रोमो देखा फिल्मों के डायलॉग के गीत पर, सभी को नमस्कार, लेकिन आज इन्हें गोदरी सिर के भेजती है तो गाने सुनेंगे, सुनते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में जब हम घर पर बच्चे चैतानी करते थे, माँ हम सब की शिकायत पापा से करती थी, तो हमारे पिताजी पूछते थे कि कितने आदमी थे, और अब तो हंसी आती है ये सोचकर, हाँ लेकिन उस समय तो हम सबकी हालत पिटाई और डांट की गरज से देखने वाली होती थी। ऐसी खुश रहिए कि ये डायलॉग जो है ना बड़े प्यारे प्यारे हैं। और हमारे अगला जो डायलॉग है वो बहुत खूबसूरत डायलॉग है, तो ये गाना आप सुनिए और उस डायलॉग का जिक्र कीजिए, और उसके साथ ही जिक्र और कर दीजिएगा कि वो अभिनेत्री कौन है, उनका वो डायलॉग कौन सा है और ये फिल्म कौन सी है। ये तीन प्रश्न आपके पास रखते हैं, अभिनेत्री, वो डायलॉग और साथ में फिल्म का नाम।

थे ये गीत अमित कुमार कविता कृष्ण मूर्ति और साथियों की आवाज में आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है और बता दीजिएगा जल्दी से, और यह भी बता दीजिए कि इसके साथ में डायलॉग कौन सा है। तो हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया है कि यानी चाक कूहे लग जाता है तो खून निकल आता है श्रीदेवी, और फिल्म का नाम भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया चालबाज। हमारे श्रोता लिखते हैं चुलबुली अभिनेत्री श्रीदेवी का असामयिक निधन हुआ, वो अफसोस की बात है, हम सभी उन्हें सच में याद करते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा ये जो डायलॉग का सफर चल रहा है हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब भी स्कूल के दिन अपने दोस्तों के साथ छुट्टी लेते थे या घर जाते थे तो लिखते थे कि अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगी तो तुम कहोगी, ये डायलॉग इनके बीच में चल रहा है और हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छे से उत्तर दिए हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने कई सारे डायलॉग्स के बारे में बड़े प्यार से बताया है और श्रोता अपनी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियाँ भी लिख देते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि घर बच्चे छोटे थे जब भी घर पर मैगी बनाते थे तो बच्चे कहते थे मामू गए, वो खुश हुआ और इस बात से हमारे श्रोता भी खुश हो जाते थे डायलॉग सुनकर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख काजोल का वो डायलॉग है पलट पलट, वो भी उन्हें बहुत पसंद है, वो सही बात है, ये कई लोग ट्राई करते हैं डायलॉग को। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमें ये डायलॉग अच्छा लगता है आपके भारत में भी है कि बाबू मिठाई जिनकी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, और सही भी है। और शोले फिल्म का डायलॉग बसंती का डायलॉग हाँ बाबू जी कहाँ जाओगे बीरापुर फतेहपुर, ये डायलॉग भी उन्हें बहुत पसंद है। पर ये डायलॉग पूरा याद करना बड़ा मुश्किल है, कैसे हैं उस अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उसे याद किया होगा। और हमारे श्रोता लिखते हैं तो

बताते हैं तो जावेद जाफरी कहते हैं कि हम कोई इसके बाप के नौकर हैं, तो उसका काम नहीं है। बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मुगले आजम का डायलॉग बड़ा पसंद है, मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं है इस पर आप राज कर सकें। क्या बढ़िया बात है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का ही डायलॉग। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और अब हम आपको अगला आप लिख कर भेज सकते हैं, जरूर भेजिएगा। और बस इतना ही बता दीजिएगा, वैसे आपको गाना सुनते ही पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा इसके गायक कलाकार कौन सा और फिल्म कौन सी है और किस समय आई थी।

सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार मन्नाडे की आवाज में आनंद बख्शी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, शोले 1975 की है। मैं हमारे समय वह आखिरी कस्टमर थे, यानी आपने अपनी आखिरी कस्टमर शोले देख ली थी, कितने सौभाग्यशाली है। चलिए हम हमारे श्रोताओं से हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन सबके उत्तर हमारे पास आ रहे हैं। खुश हुआ क्यों मिस्टर इंडिया, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। और हमारे पूछा था आपसे कि इस फिल्म के कई सारे डायलॉग शायद आपको पसंद होंगे तो जरूर भेजिएगा। मोती जी तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझू, हमारे श्रोता कह रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि असरानी का डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं क्या, शंभू का दिमाग दोधारी तलवार है, प्रेम चोपड़ा का ये डायलॉग उन्हें बड़ा पसंद है, एक हाथ का पंजा कटा हुआ है तो उसके ऊपर धातु का ग्लव यानी कवच पहना हुआ है। और हमारे श्रोता लिखते हैं यूँ तो हमें बोलने की आदत तो है नहीं, चल बसंती आज धनु की सवाल है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हमारे श्रोता ने बहुत सारी चीजें लिखी है आपको हमको देंगे, नहीं ये डायलॉग थोड़ा अलग है, क्या था सही डायलॉग आप जरा भेजिएगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मरते दम तक साथ चलना है, चाहे दुनिया भर की तरफ चाहे ये गीत के साथ बोला आपने लिखा है। पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे, ये मेरा फेवरेट है, कितना बढ़िया डायलॉग है ना। तुम क्या लाए हो ढोलिया, ये मुट्ठी भर ज्वार, बाकी क्या अपनी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मुगैम्बो खुश हुआ बड़ा पसंद है। हमारे एक और जो मैंने मेरा नाम सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है, कितने आदमी थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम अंग्रेजों के जमाने के डीलर, हमारी इतनी बदलियों के बाद जब हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे। ठाकुर साहब गब्बर से क्या कोई बकरी का बच्चा है तो जो दौड़ा और पकड़ लिया। तो बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है और आपने लिखा है कैसे हो सुरमा भोपाली, ये डायलॉग भी बड़ा अच्छा है। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये सही डायलॉग है और ये डायलॉग हम कई बार याद भी करते हैं। हमारे श्रोता ने बसंती के सामने नहीं नाचना ये भी लिखा है, इतनी खामोशी क्यों है भाई, ये डायलॉग भी यहाँ पर आया है। और इसके साथ ही बहुत सारे डायलॉग के साथ में हमारे श्रोता ने लिखा है कितना इनाम रखे हैं सरकार ने, ये बात भी कितने आदमी के ये सारे डायलॉग आपके रिपीट हो रहे हैं, कई सारे लोगों ने भेजे हैं। और इसके साथ बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हमारे बीच में आ रहे हैं। और इसमें हमारे श्रोता ने लिखा है, जानते हो संसार का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, पाप के कंधे पर बेटे का जन्म आता है। बड़ा बड़ा खूबसूरत है और बड़ा दिल को कलंकित महसूस करने वाला ये डायलॉग है। सुनने से पुराने जमाने के सीरियल मूवी हमारे का दिन बहुत अच्छा है, जब कहते हैं प्रभु आप बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या कन्या यू के यू, बहुत सारी बात जो चलती है उनमें बड़ा मजा आता है। तो कालिया कहता है दो हैं कहाँ रे फौजी नंबर दो, कई सारे डायलॉग जो हैं लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए ऐसे ही सुंदर गीत आप सुनते रहिए और अगला जो गीत है वो हम आपको सौंप रहे हैं। बस यही करना है कि उस गीत के गायक को पहचान लेना है और जरा सा पहचानिए कि ये डायलॉग कौन सा हो सकता है। डायलॉग के साथ में आप पहचान लीजिए जल्दी से वो डायलॉग कौन सा होगा और ये फिल्म कौन सी होगी।

के अंदर हम आपको सुनवा रहे हैं, क्योंकि हमें सुनवाने हैं बाकी डायलॉग के गीत भी। और इसके साथ में हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो है वो किस फिल्म से है, और बता दीजिए जल्दी से। तो आपने हमें बता दिया कि रामनी फिल्म से है, और बहुत अच्छे से बताया कि ये भाई लोग हाथ किसी पर पड़ता है तो अपने रूट पर ही रूट जाता है। उसके बाद डायलॉग है बिल्कुल सही। चलिए, ये सारे डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला। माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बिल्कुल सही। और

ने हमें बता दिया कि राम ने स्वयं से है और बहुत अच्छे से बताया कि ये भाई लोग हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता ही उठ जाता है। उसके बाद डायलॉग है बिल्कुल सही। चलिए ये सारे डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला। माय लॉर्ड इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बिल्कुल सही और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं और खाली आज कितने आदमी थे ये डायलॉग भी हमारे श्रोता ने दिया है। और इसके साथ में आपको अलग अलग गीतों की कई सारी बातें बनाऊंगी। तो एक डायलॉग मैंने लिया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, उससे वह गीत है इस फिल्म ओम शांति ओम से। और उसके साथ ही हम एक और बड़ा प्यारा सा

जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये डायलॉग भी इस फिल्म का है जो रिहर्सल में चालिया, तो सुनते हैं ये थोड़ा।

कार्यक्रम के अंतिम डायलॉग के साथ में, और वो डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा है। अगर आप बताएंगे कि वो डायलॉग कौन सा बचा है तो जरूर बता दीजिएगा। बाकी हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बाबू चाहे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये फिल्म कितनी खूबसूरत थी ना, किस किसने देखी, कब कब देखी जरूर बताइएगा। मैंने अभी दो दिन पहले ही इस फिल्म को देखा है। हर रोज मैं इस फिल्म को देख सकती हूँ, जीने की ताकत देती है। सुनते हैं यह खूबसूरत सा नगमा और आपको जो थोड़े थोड़े गीत सुनवाए हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कभी और किसी और रोज वो जो गीत रह गए उन्हें पूरा सुनाएंगे।

सभी सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी, उन्होंने वह पूरी कविता लिख डाली। मौत तो एक कविता है, मुझे मुझसे एक कविता का वादा है। वो पूरी कविता पढ़ने का समय तो नहीं है, जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में कितनी डोर कट जाए ये बात है। और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी और लिखा है कि आनंद फिल्म उन्होंने दूरदर्शन पर देखी थी और कई सारे और डायलॉग हम तक आए हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है तंदूर की कीमत कुछ कहता है रमेश बाबू, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा डायलॉग दिया है और उसके साथ आज इस कार्यक्रम का समापन करते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सीधी बेहतर में कार्यक्रम की सुविधा सदन में आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

रहे हैं। हम कहते हैं कि घास खड़ी है, लेकिन घास खड़ी नहीं है, ये हरे रंग के प्रकाश को लौटा रही है, परावर्तित कर रही है, इसलिए हमें हरी घास नजर आती है। आकाश नीला है? नहीं, आकाश नीला नहीं है। हमें ये पता है वहाँ नीला कुछ भी नहीं है। आकाश अगर नीला नजर आता है तो उसकी वजह बिल्कुल अलग है। नीले रंग का अपवर्तन गुण बाकी रंगों से बिल्कुल अलग है, इसी वजह से आकाश नीला है।

वर्ष वो है जो वो त्यागता है। जो भी रंग बिखेरी वही हमारा रंग हो जाता है। हम जो अपने पास रख लेंगे वो हमारा रंग नहीं होगा। फिर

कुछ रखते हैं और ना ही कुछ परावर्तित करते हैं।

लेकिन किसी भी चीज में

weekend.

Quand je n'ai pas mis pas de temps. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम निर्वाचन आयोग ने विशेष जीवन पुनरीक्षण प्रक्रिया FIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेकिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु महिला सिंगल्स में और साकेत साइनाज

0: देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा जैसे रक्षा के केंद्र हैं।
1: Our discussions must advance हमारी चर्चाओं

0: बताएं आज के संघर्षों ने संवाद और संस्कृति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
0: ऐसे समय में मिल रही है जब दुनिया तेजी से बदल रही है। संघर्ष आर्थिक अदृश्य

से अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।

पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एंड्रे जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय जलंधर के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई, स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे

0: को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीत लिया है। श्री शाह ने गाजियाबाद में भारत NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया।

0: काम एनडी अंदर और एनडी आरएफ ने किया है।
1: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत डेवग्रिड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि डेवग्रिड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसे इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान से एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में सैनिक चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक

गुजरात के मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात पत्रकार फैक्ट्री हादसे को हृदयविदारक बताया है। डॉक्टर यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने के लिए कहा है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रीड 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ स्वतंत्रता सेवों को मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2020 जम्मू कश्मीर आकांक्षित प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे कृषि से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे

का तेज डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।

refinery for three years. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और

0: टूर्नामेंट में सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की गंगा केराज क्षेत्र की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दूसरा समाचार का भी अंक समाप्त।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: Chapter. Je vais te rester cool.
1: Yeah, no, no.

देते हैं आपका हाथ वो है कार्यक्रम जिन्हें तुम आ गए हो सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

di canuti per vai. Se non riga, non panda. Occhi sono cobalai e pals. Vole di cibi. Carlos, se vuoi sabato, se vede parti per te. आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला गीत डिटेक्टिव कौशल से गीत करते हैं हेमंत कुमार की आवाज में शैलेंद्र के बोल और मुकुल रॉय के संगीत के साथ।

रहे थे यही दाखिल डॉफिन से आशा भोसले की आवाज में मजबूर सुल्तानपुरी के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा जो की है फिल्म अनाड़ी से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, अक्षय जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

सन्मान एनडीआरएफ के समस्त बल से

विभाग की टीम देखते हैं एफ एम के सब नवाज जिनका होस्ट जिनके तीन बज रहे हैं अगला प्रसारण सचिव सहेली प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर में आइए जुड़ते हैं विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण से।

सभी साथियों को, सभी सचियों को, प्यारे प्यारे जितने साथी बैठे सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंत्र दीपा, आपको भी दीपा प्यार भरा नमस्कार। आपको साथ में हमारी सारी सखियों, सहेलियों और हमारे छोटा भाइयों को हमारा हल्दी नमस्कार। तो आपने पिछली बार भी हल्दी नमस्कार जब भी वजह बताई थी, आज भी हल्दी नमस्कार है, ये आज भी वजह बताइए। एक बार जब भी आते हैं ना तो अपने श्रोताओं को याद दिला दो, कैसे ध्यान रख रहे हो

0: हमारे कौन से राज्य के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, हमारी सहेलियाँ अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकती है,
1: बिल्कुल
0: वो हम भी साझा कर सकती है। लेकिन विषय जिन पर हम बात करेंगे वो हम साझा कर लेते हैं।
1: स्वास्थ्य का ख्याल रखना देखो ना इसलिए भी बहुत जरूरी है, इन दिनों बहुत गर्मी हो रही है तो ये एक जाहिर सी बात है कि पसीना आता है, लेकिन कई लोगों के पसीने से दुर्गंध आती है।
0: कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम किसी के पास बैठे हों तो दूर से भी लाग भूस सिखोने की जरूरत ना पड़े या उसे भी अच्छा महसूस हो तो अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ हाइजीन के ऊपर ध्यान रखते हुए जो रखते हैं तो इस बात का सभी ख्याल रखें। और इसमें क्या उपयोगी टिप्स हो सकते हैं, थोड़ी हम मदद करेंगे, थोड़ी हमारे सुनने वाले हैं वो उपयोगी टिप्स बता सकते
1: हैं। बिल्कुल। और फिर मुझे तो देखो आगे इसके बाद ना खरीदारी करने के जाना है प्रोग्राम के बाद।
0: तो क्या खरीदने वाले हो, कैसे खरीदना है तुम्हें ये बताओ।
1: तो मैं सोच रही हूँ एक बहुत अच्छा सा ना फोन आया स्मार्टफोन और किस्तों पर भी मिल रहा है तो सोचे कि चलो आज जाकर के देखते हैं कितना किस्त है क्या है हम भर सकते हैं या नहीं। तो बड़ा मन है कि फोन खरीदे।
0: देखो
1: फोन वो स्मार्ट वॉच वाला साधारण
0: क्या होता है ना आसानी से वो चीज़ हमारे हाथ में आ जाती है तो हम किस्तों पर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भाई वो चीज़ 15,000, 20,000, 50,000 तक की भी हो सकती है उसे हम कुछ 2,000, 4,000, 5,000 देकर भी उसे अपने हाथ में ले सकते हैं। यानी कि बहुत कम रकम में आसानी से वो चीज आ सकती है लेकिन हर चीज के कुछ अगर फायदे नहीं होते।
1: बिल्कुल। तो हमारे सोचना कहीं इस तरह से ये फोन लेना या स्मार्ट वॉच लेना या कोई और चीज के लिए किस्तों के उस

0: का क्या अनुभव बदना था, तो अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव वो हमारे साथ साझा कर सकते
1: हैं। और अनुभव तो बहुत सारे तरीके के होते हैं ना, देखो दोस्ती में भी कितने अनुभव मिलते हैं, हमें अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं ऐसी दोस्ती होती है जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, कोई बहुत लंबी दोस्ती होती है, और जो बचपन की दोस्ती भी रहती है जहाँ पर हम जो काम बिल्कुल छोटे, और आज तक दोस्ती तो क्या ऐसी

दिल को हल्का करने में या अपने उस दोस्त के पास जाने में। एक और दोस्त यानी कि गेहियों को भी कई लोग अपना दोस्त बना लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो वो लोग दोस्त बनाते हैं, कोई मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है, कोई किताबों को अपना दोस्त बना लेता है, कोई रेडियो को अपना दोस्त बना लेता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकारी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं और अपने शौक में वो इस तरह डूब जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर रंगों से प्यार है, चित्रों से प्यार है, तो चित्रकारी जैसे जो और भी कला आपके भीतर है, चाहे वो गायन की हो किसी वादन की हो, तो रंगों की जब मैंने बात की तो मुझे याद है कि आज जिस पद्मश्री महिला की हम बात कर रहे हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी है,

बहुत सुंदर गीत था और जिस तरह से जितने खनक सुना वैसे ही कुछ खनक रंगों में होती है और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं, जिस किसी कारण जो अपने रंगों का जादू ना जब वो चला

0: के अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप दे सकते हैं ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा।
1: और बच्चे के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लास ले लूँ, लेकिन मन में पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहाँ, तो ये ख्याल आने भी लग दीजिएगा, जरूर अपने पास की किसी कोई क्लास कहीं से कुछ सिखाया जा रहा है तो जाकर एक बार देखिएगा जरूर कि आप कर पा रहे हैं या नहीं।
0: पर 40-50 के बाद तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है, उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारी से काफी हद तक मुक्त हो चुकी होती है, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी जा करके नौकरी करके शादी हो चुकी होती है। तो आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है तो बिल्कुल पीछे न हटे, अपने उस शौक को पूरी तरह से दी दीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार ध्रुवीबाई के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में छोटा सा गाँव है सुजौर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ 1968 में और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे।

भी उनकी हो नहीं पाई ज्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिलता है। और जब छोटी थी वो तो चित्रकारी का बड़ा

अपने पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें जाकर वो चित्रकारी का अपना शौक उनसे पूरा किया करती थी। अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी, तो पड़ोस के ही गाँव में उनका ब्याह हो गया। सभी अपने दोनों आस पास के गाँव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला भी रहे थे तरीके से। और भूरीबाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 के बाद ही भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था, जिनसे तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों के आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था। उस वक्त तो भूरीबाई के पति को भारत भवन या बगीचे की देखभाल का काम मिल गया, तो उनके साथ वो भी भोपाल के लिए। और बिल्कुल क्योंकि कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था, तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो की बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे, उनके पति चले आए, हाँ पति के साथ चली आई। और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना शुरू किया। यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी वहाँ के जो देवी देवता थे उनको समझने के लिए भूरीबाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी दौरान उन्हें ये भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरीबाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा। उनके दीवारों पर तो बनते ही थे लेकिन ये चित्र उन्हें कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा। तो वे तो उम्मीद से बनाती थी। अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आ पड़ी कि जीवन में कभी चला उसको तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु की जे स्वामीनाथन के पास। भूरीबाई ने 5 दिनों में ये काम करके दिखाया जिसके लिए उन्हें उस वक्त 1,000 रुपए मिले। यही उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपए मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और यही से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू होगी और ये ऐसी शुरू हुई कि आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरीबाई अपने बारे में बताती है कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की संस्कृति धरोहर है, जंगल है, पशु पक्षी है और त्योहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी जिन्हें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का एक अंदाज होता है तो वो उनका अंदाज था। भूरीबाई कहती है कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपनी चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन कराइए। बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास नहीं, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए। अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।

और पूरी भाई का ये मानना है कि आप चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज में आगे मिलाने दीजिए। आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी

0: कैसा होता है कि बीच रंग में मिल जाए वैसे ही बन जाता है
1: बिल्कुल।
0: और दोस्त भी होती है, अगर आपको दोस्त स्वभाव अच्छा मिल जाए ना आपके रंग में वो रंग जाए तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी अच्छी बात है ना तो 100,000 दोस्त के बन।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए यही एक संदेश हमारे सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांकन हुआ होगा। हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं, तो जो अगर सखी सहेली न होती तो हमारी दोपहर कितनी सही होती भाई। सखी सहेली के रहते आपकी दोपहर थोड़ी सी भी नहीं होगी। और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, अधिक जब हम क्या सभी रिश्ते जन्म से संबंधित होते हैं और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं उन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है वो होता है दोस्ती का, और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद सुनते हैं, खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं। और मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है वही सच्चा दोस्त होता है ना।
0: लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है। तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
1: ऐसा तो नहीं हो सकता।
0: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहाँ ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वही पुराने समय में दोस्ती का संबंध पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से अब जो थोड़ा सा मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की तरह जो हम कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
1: इसी तरह हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सुनहरा रहता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने लिखकर भेजी। खुशी का एहसास दोस्तों के बिना जिंदगी दे रहे हैं, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करें और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाएं, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त हंसी मजाक नहीं करते बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ अहम इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं है।
0: सही कहा। और इस हमारे सखी कह रही है कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण सुदामा कर्ण दुर्योधन मित्रता की चर्चा न हो ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझ कर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं। और दोस्ती यही मांगती भी है, अपना स्वार्थ नहीं होता, उसमें भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो दो बस मेरे साथ है, आपके सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनाओ की दोस्त तो मिल जाएंगे लेकिन आपके पास हम या कोई संपत्ति हो सकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मानते रहेंगे जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल न करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
1: तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन लीजिए।
2: दोस्ती यारी सब हो गई,

0: आरती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ आपकी सखी टेंशन वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती के उस सीखे।
1: देखो दीपा हम दोनों भी कॉलेज के दोस्त हैं और हमारे सखियों में तो सारी दोस्त हैं
0: जी।
1: तभी तो ये लिख रही है कि दोस्ती बिना जब खेला होता है जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियाँ दोस्त हैं। हर रोज एक घंटा हमें मिलता है सखियों के साथ जिसकी बातें करते हैं हम सब। सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियाँ भी उस दोस्त से कमेंट करके भी जैसे बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का सबको हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है हमारे के साथ। हम से खरीदा नहीं बन सकता, इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग जीना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है और अपने बचने की सीख देता है। तो जहाँ इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहाँ कोई

श्रोता भाई बहन कहते हैं, जैसे मेरी जिंदगी में विविध भारती किसी संगी एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जश्न होना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावना को पूरी तरह समझ नहीं पाते।

0: साथ यही चलता है, इसी बात की हम कामना भी करते हैं। और ये बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सभी सहेली की वर्षगांठ है, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही।
0: तो अगर संदेश पढ़ते हैं इसको, हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले रिश्तेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में दादस बनाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है, और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरा सुनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो लोगों पर आसमान का भरोसा नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको धोखा

बोल पाते थे, पर आज व्यस्तता के चलते बच्चे किसी से नहीं सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं, तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर हमारी

0: करेंगे और इनके कमरे सही होंगे तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना, इनके बिना तो सब बच्चे सब कुछ छूना है। तो वही चलिए समापन बहुत सारे एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखें, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सन मुलाकात भी करते हैं।
1: बात हो सही, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
0: तो अब दोस्ती की बातें बहुत ही

0: चाहते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सुधीन भारती के अगले अंक में आप जरूर से हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिसका हमने बताया था कि एक किस्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है, क्योंकि किस्तों पर खरीदारी करना भी असल में आसान थी हमारी प्रतिनिधि चीज को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो ढाई तलवार की तरह होता है ना दीपा?
1: बिल्कुल सही कहा, अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए या कुछ न किया जाए तो कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता
0: है। बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि दो ढाई तलवार है, अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है, तो उनका कहना है कि किस्तों पर खरीदारी कितनी सही है। तो आजकल EMI और UPI का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पर जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं है क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किस्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है इस दिन में किस दिन में, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ खराब हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज की आपको बड़ी किस्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीज़ें चल जा रही है,
1: लेकिन ये बताओ देखो महंगे वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया, कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर उनको लेना हो तो एक साथ हम ले सकते हैं, कितना आसान हो जाता है किस्तों में चीजों को लेना।
0: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किस्त बनानी होगी ना, आपने कहा घर लेना तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज होती है जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला बहुत बड़ा घर लेना, अपनी जरूरत के मुताबिक आप

0: निकाल कर दे पाएंगे, लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ जाए देने के लिए तो कभी ना कहीं वो मुश्किल का सबक बन जाएगी।
1: ये बात तो, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई जरूरी चीज़ है जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहीं के फ्रिज, ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है।

ये कहूंगी कि इस अगर आपको लेनी है तो बहुत सारी किस्तें जब आपको समय समय पर जाती है ना, तो आप या तो उन्हें इसमें लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं किस्तों के बारे में लिखना, और मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किस्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महीने वाला, तो किस्त अगर आप भूल गए तो जो वसूली के लिए जो उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का, वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज हमारी वापस से मांगी जा रही है, या इसके जैसे जो हमें जो भुगतान करना पड़ता है, जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है।

0: जीरो परसेंट के नाम पर कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लगता है, या इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है। बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई ये 2 या 3 हज़ार की नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हज़ार तक की।
1: और वो जो 20 हज़ार की चीज आपको खरीदनी थी वो आपको 20 की जगह खुद से 30 हज़ार या 35 हज़ार तक की वो पड़ जाए, तो इसीलिए आप किस्तों में खरीदने का जो एक कहते हैं कि वो लुभावना जो एक प्रलोभन होता है उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारी साथी लिखती है कि किस्तों में खरीदारी अच्छी है क्योंकि आपने आपके पास ज्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग अब किस्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चरण के लिए सबके पास फ्लैट गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। मासिक भुगतान का ये आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने EMI दे सकते हैं तो वही चीजें आप खरीदें, क्योंकि 2 या 3 किस्तों की लेट लगी थी फिर ब्याज बढ़ने की महंगी पड़ जाती है और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं। किस्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं, पैसा भी रुक जाता है।
0: बिल्कुल ये सही कहा, देखिए इन्होंने तो हमें बताया कि किस्तों के फायदे क्या है नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किस्तों से खरीदारी के कई नुकसान है। जैसे वो कहते हैं कि सिविल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी हो सकती है, GST कहाँ लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता। फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किस्त तो हमें जानी ही है। फिर कर्ज का जो ये जाल है, एक साथ कई सारे EMI चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार, क्योंकि बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है पेंशन और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है। जिस वजह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किस्तों पर खरीदारी करना सही है जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसलिए किस्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा, हमारे जो साथी हैं उन्हें संदेश लिखा है उनका कहना है।
1: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको अगर आप

0: सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं। तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम वे की जरूरत चीजों से खरीदने से बच सकते हैं।
1: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना

0: सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है, लेकिन प्रतिशत लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
1: देखो दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में से जानते हैं, और बहुत से लोग पेट की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं। और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है, थोड़ा सी बात में आधी सच्चाई तो है। और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया होना उनकी मौजूदगी होती है।
0: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरिया थी वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसी खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने की यौगिकों से बदबूदार

से हम इसे दूर भी कर सकते हैं। तो उसके सबसे पहले यही है कि जो सल्फरयुक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करें, क्योंकि उससे ही पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज़्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज़्यादा जमा ना होने दीजिए,

insan ज्यादा सेवन अगर आप करते हैं या मांसाहार का सेवन अगर ज्यादा करते हैं तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज्यादा जमा ना होने दीजिए और रूखी कपड़े पहनने के लिए डाले आरामदायक कपड़े पहने। शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ सफाई अच्छे तरह से रखिए। कॉफी या चाय इनका सेवन थोड़ा कम करिए, धूम्रपान का सेवन कम करिए क्योंकि ये भी शरीर की गंध को बढ़ाता है और बिना धुले हुए कपड़े कभी ना पहने।

0: घरेलू उपायों की बात करें तो सफेद छिलका है या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें। सफेद छिलके के रस को आपको अपने जहाँ जो प्रभावी हिस्सा है जहाँ बेगम ज्यादा आती है पसीने में वहाँ रगड़ कर धो लेना है। टमाटर है इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। नीम के पत्ते हैं उनसे आप स्नान कर सकते हैं। नींबू के पत्तों को उबालकर नींबू का रस निचोड़ कर उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचल कर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में कुछ बूंदे डाल के नहा

सब हो जाए। नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है, इसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।

लिए विशेष संदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ इस सभी एक

0: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की और आप सभी की शुभकामनाएं हैं। वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
1: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिवानी कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
0: जमील भाई, खुशकिस्मती तो हमारी है जो आज सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें।
1: जी 2009 पर मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है।
0: अरे वाह, बड़ा लंबा अच्छा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अच्छा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं
1: है? निराशा हुआ है मैम, बहुत दिल से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है।
0: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
1: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 35 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
0: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
1: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
0: आ जाइए गाने को, बिल्कुल अपनी पसंद
1: की टीम का नाम है महबूब की मेरी और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैम थोड़ा सा गुनगुना देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल गुनगुनाइए।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम तो बताने दें।
0: जी मैं तकिया मरिया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
1: जमील भाई नमस्कार।

0: किसने फोन किया, कहाँ से फोन किया?
1: जी नमस्कार, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए रेडियो कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश छाया गीत और बहुत ही प्रोग्राम आपका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं नहीं ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर में बहुत अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आस पास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा
1: मेरा माँ है पापा है तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, तो थोड़ा सा देखभाल करती है, तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बारे में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात मंदिर है माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर।
0: अच्छा
1: तो ये बहुत ही लोग आती है वो घूमने के लिए बाहर से, डिगी है और डिगी के आसपास बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है डिगी के बारे में।
0: तो वहाँ पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या 12 महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
1: किसी भी समय में आप को दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
0: अच्छा ये बताएं कि आज आपने भैरव फरमाइश के कार्यक्रम में फोन किया है तो कोई गाना भी तो सुना होगा अपनी पसंद का?
1: जी जी मेरे को गाना सुना दीजिए, सजन चले ससुरन मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है बंगाली भाषा
0: जी,
1: तो बंगाली लोग रहती है, तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा लोग जानती है, हिंदी भाषा सीख जाती है
0: जी।
1: तो बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
0: और विश्वजीत जी, आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा। और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी

0: बहनी नमस्कार।
1: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
0: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनक, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ। बहन जी
1: बताएं जरा अपने बारे में।
0: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और साथ में फूल वाला काम डेकोरेटर का।
1: अच्छा, और वैसे खेत में आजकल क्या लगा हुआ है?
0: इस समय खेत में कुछ नहीं, खेत तो खाली है। समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो रहा है और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
1: अरे वाह, अभी तो सख्त गर्मी होगी।
0: जी जी,
1: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
0: जी जाते हैं, अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं।
1: अच्छा,
0: तो जाते रहते हैं और तो उसमें फल भी लगे हुए हैं।
1: कौन से फल लगाए?
0: अभी आम है और कटहल है।
1: आम कौन सा है, आम की कौन सी जाति?
0: दशहरी है, दशहरी।
1: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
0: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
1: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ पे क्या हाल चाल है, क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
0: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो सरकारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है।
1: अच्छा,
0: वो भी बहुत देखने लायक है।
1: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
1: हाँ, लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम मिले।
0: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
1: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद दीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और तो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं।
0: अभी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
1: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: शेफाली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपकी मुखातिब हूँ। मैम
1: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
0: और मैं 2003 से रेडियो बीच भारती जी का सुनने वाला हूँ। मैं घाट कोपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
1: ये बताएं कि मुंबई के घाट कोपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
0: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, उसी घाट के बगल में वहीं मैं रहता हूँ मैम।
1: अच्छा तो वहाँ क्या करते हैं?
0: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
1: अरे बहुत क्या बात है।
0: जी जी 20 साल से ऊपर हो गया होगा, मेरी फोन आज लगी है।
1: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है। हेलो फरमाई
0: रेडियो सुन सुन के मैं जो भी इतना जो भी बचपन से सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज़।
1: जो इस समय आपकी आवाज़ है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय, क्योंकि भारती के साथ ऐसे ही जुड़े रहे। और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है, उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
0: जी जी मैम, फेमस है उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी है। यहाँ तक विदेशी पर्यटक भी तो स्वाद चखते हैं मैम। एक नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
1: गंगा आरती तो बहुत बढ़िया होता है।
0: गंगा आरती मैम आप जथा समय घाट से देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट से जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
1: जी जी, और उसका जो अस्त गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चलें परवेज भाई, आपकी खुशी को हम दुगना कर देते हैं, आप बताएं आपकी आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
0: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज सुनना मैम, गाने का बोल है अली जवर आल, अली जवर आल, अली जवर ए अली, तो ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
1: अच्छा सुनिए।

0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बात कर रहे हैं हमसे?
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल दास।
0: ओ साहिल भाई, क्या हालचाल है?
1: ठीक हो? आप सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक है। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं, और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं कश्मीर आके ना उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम? कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ दीदी, ये काम बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
0: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
1: बिल्कुल 2012 से।
0: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी?
1: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहेगी।
0: जी जी जी जी।
1: और आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए, तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
0: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं, या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी। आज के फनकार आता है, श्रीवा सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
0: विविध भारती के जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
1: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
0: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: तो इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो दिनों पहले यहाँ का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
0: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया गया आपको?
1: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज है, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर।
0: साहिल भाई ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली, तो चलिए अपनी प्यारी की बातचीत को यही रोक देते हैं, और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: जी नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
0: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से एमसी सिसोदिया बोल रहा हूँ।
1: जी भाई, क्या हाल चाल है?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
1: यदि आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
0: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो ये समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
1: भाई ऐसा क्यों?
0: मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती पे कॉल लगना है ना, ऐसा होता है कि आपको मतलब सारी खुशियाँ मिल गई एक साथ में।
1: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे?
0: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप से आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप से। अगर हम कहीं बाहर भी जाए ना फिर भी हमें मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, इसके अलावा पिटारा के तहत में जो आता है चले सेहतनामा आता था, अभी चली लाइट के सितारे शुरू किए हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे, उसका तो हम सबसे बड़े फैन हैं।
1: अरे वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए, क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद है, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं, खेत से कर रहे हैं क्या?
0: इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना, तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं। खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया है, तब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
1: अच्छा, आपको जरा ये बताएं कि आज कौन सा गाना सुनेंगे?
0: फिल्म कला में अर्पण और जानने के बोले लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना काफी अच्छा लगता है।
1: जी गाना है भी अच्छा, उसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र की हिम्मत राज श्रृंगार बात कर रहा दीदी, आपका पुराना श्रोता।
1: हिम्मत भाई नमस्कार।
0: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप अपने बताएं, क्या हाल चाल है आपके?
0: मैं अच्छा हूँ दीदी।
1: क्या चल रहा है आजकल?
0: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था। काम पर से अभी फोन लगाया मैंने।
1: अच्छा, तो आप बताएं वहाँ पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
0: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी।
1: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के बाद
0: दीदी?
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली तो वो छुट्टी जो है हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में।
0: आपकी आवाज सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे सिपाही दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के।
1: देखिए रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है
0: अमरावती विदर्भ में? बहुत गर्मी दीदी, सर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है दीदी, 47 है।
1: ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
0: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी, और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ।
1: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
0: पूरी जब जब दुल्हे तेरी और आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब के आज में गाना है दीदी।
1: तो चलिए अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का

0: की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी के क्या हाल चाल है उदयपुर में?
1: देखो तो 40-42 के आसपास चल रही है।
0: ऐसे में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: अभी थोड़ा ठंडा है।
0: गर्मी के मौसम में कामकाज बहुत इफेक्ट करता होगा क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपका किस चीज का काम है?
1: सिलाई वैसा ही है, मतलब सिलाई का।
0: अपनी शॉप है
1: जमा कोट वगैरह अभी भैया की शॉप है।
0: अरे वाह क्या बात है। आप तो जेंट्स टेलर है और या लेडीज टेलर है या दोनों लेडीज जेंट्स?
1: जेंट्स ओनली।
0: तो गर्मी का मौसम है तो कामकाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका? आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता होगा तो उसके लिए कारीगर ज्यादा लगाने पड़ते होंगे?
1: कारीगर तो ज्यादा ही है मैडम, मालिक की कृपा है और उनको टाइम पे भी मिल जाते हैं कपड़े।
0: क्या बात है।
1: इस बार थोड़ी सी शादियां कम है।
0: अच्छा।
1: इस हिसाब से थोड़ा फर्क है। पर्यटकों की तो बारी धूम मची हुई है राजस्थान के अंदर।
0: हम इसी पॉइंट पर आने वाले थे, वही बात आपने छेड़ दी कि भाई उदयपुर और राजस्थान में पर्यटकों के क्या हाल चाल है, भाई इतनी गर्मी में भी पर्यटक है या नहीं है?
1: जी बिल्कुल है मैडम, 12 ही महीने उदयपुर के अंदर पर्यटक मिलेंगे ही मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: चाहे गर्मी कितनी भी हो।
0: तो ये बताएं कि उदयपुर में और चीजें ऐसी क्या हैं जो देखी जा सकती हैं झीलों के अलावा?
1: झीलों के अलावा तो एक मानसून पैलेस है और वो भी अच्छा है। थोड़ा सा ही आगे कुंभलगढ़ है और 40-45 किलोमीटर की दूरी पर नासिक द्वारा सिद्धनाथ जी का शानदार मंदिर है।
0: जी जी।
1: उसके बीच में एकलिंगपुरा जी का एकलिंगपुर मतलब एकलिंगगढ़ के नाम से महादेव जी का मंदिर है और अभी पिछले 3-4 वर्षों में नया एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है, उदयपुर में ही हमारे सिंधी समाज के द्वारा ही बनाया गया है, निर्मित किया गया है।
0: अच्छा।
1: सेम टू सेम जैसा वैष्णो देवी में बना हुआ है, ज्योत भी वही वैष्णो देवी माता जी से ही आई थी और लंगर 12 ही महीने चालू रहता है।
0: अच्छा। अब ये बताएं कि हमें इंतजार है इस बात का कि आप बताएं अपने पसंद का फिल्मी गाना आज के कार्यक्रम के लिए।
1: रफी साहब का गाना याद आ रहा है मुझे, आवाज मूवी से।

0: बहन को नमस्कार।
1: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत।
0: आज हमारे मन में इच्छा थी कि शेफाली बहन से बात करेंगे, तो बात पूरी हो गई।
1: क्या बात है, तो हम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से?
0: जी मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
1: अरे वाह, मेरा हाल चाल तो बताइए।
0: हाल चाल हमारा मस्त है, गर्मी 44 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत ही होती है।
1: जी राजस्थान की गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर क्या काम काज है?
0: हमारा टेलरिंग का काम है, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं।
1: क्या बात है भाई।
0: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 74 साल।
1: 55 साल से आप इस धरती के साथ जुड़े हुए हैं।
0: जी
1: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती में।
0: मैंने सबसे पहले तो वाल वाले रेडियो सुने थे, उसके बाद में चार चार सेल वाले ट्रांजिस्टर आए थे, फिर दो सेल वाले आए थे
1: जी।
0: और अभी तो मोबाइल एप पर सुन रहे हैं,
1: सबसे
0: परिवर्तन हुआ है।
1: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, कैसे सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे आप सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते थे?
0: मोबाइल में नहीं आता है।
1: ये बात बिल्कुल आपने सही कही है।
0: समय होता है उसके 5 मिनट पहले से हम वो ट्यून कोशिश कर रहे हैं।
1: फोन
0: बड़ी अच्छी लगती थी।
1: जी जी जी, तो अभी भी रेडियो अपने पास रखा है या नहीं रखा है?
0: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आज बंद है।
1: हाँ तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं। तो अब ये बताएं दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
0: वो कौन थी

0: लता जी की आवाज में राजा मेहंदीराज अली खान साहब के शब्द है और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
1: जी।
0: लग जा जले हसी रात फिर हो न हो
1: काल जय गाना है इसकी तो कोई बराबरी नहीं है। अद्भुत गायकी अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

वर्ष कितना है, आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें तो एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। क्योंकि वो जिंदगी चाहे जितनी तेज क्यों न हो जाए, एक अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देता है। महाराज आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से। हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। हमारे टेलीफोन नंबर फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे नंबर हैं 400-24662। नंबर एक बार फिर से 400-24662। मुंबई का एसटीडी कोड है 022022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 2867-0288-2867-0288। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें ताकि उन श्रोताओं को भी उनके पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला डेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राजेंद्र सिंह होंगे। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं एहसासों से भी बनते हैं। तो हम फिर मिलेंगे इसी स्नेह और अपने तन के साथ। शिताली कपूर को दीजिए।

रूह बेजान हुई जिस्म भी राख हो गया, रूह बेजान हुई जिस्म भी राख हो गया, तेरे बाद मेरा हर लम्हा खाक हो गया, तेरे बाद मेरा हर लम्हा खाक हो गया।

योद्धा बनकर ही सबसे बड़ा दर्द दे जाता है। एक ऐसा सन्नाटा छोड़ जाता है जो सा उम्र आपके साथ रहता है, भीतर और बाहर। सबसे बड़ी यातना वही है जब खुद तुम्हारा सब कुछ होकर भी तुम्हारा कुछ न रह जाए। और ये पीड़ा हर रात, हर सुबह, हर पल, हर सन्नाटे में हमें भीतर ही भीतर तोड़ देती है, भीतर ही भीतर तोड़ती।

उसका बन जाता है कभी कभी किसी से। नदी से बनता है नमर से बनता है, दिल टूट फूट जाता है, जिंदगी बेरंग सी नजर आने लगती है और जिंदगी का सफर तेरे मेरे उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर सुनसान रास्तों की ओर चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। बेहद प्रासंगिक है इन दिनों बीमार लोगों में खोजना खुद को, लंबी बेहोशी के बाद

इंसान एक पल को सब कुछ लगने लगता है और फिर जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है, वो बात जो शुरू होनी थी शुरू ही नहीं हो पाती, वो बात जो हम कहना चाहते थे कह ही नहीं पाते। और हम सब चुपचाप भारी कदमों से लौट आते हैं फिर से उसी रंगहीन दुनिया में। दस्तक भी मैंने खुद से दरवाजा

तलाश सभी को होती है ना? आपको भी है ना? पर कहाँ मिलता है तो रिश्ता हर एक को। शब्द चाहिए थे मुझे, प्यार भरे शब्द। सही कहीं कुछ शब्द मिले थे।

जाते हैं कुछ लोग और आप दबे कुचले से उस नुकीली चुभन को सहते चले जाते हैं सहते चले जाते हैं। तब लगता है जैसे हर लम्हा जल रही हूँ मैं, रात बनकर उतर रही हूँ मैं, जिंदगी जी रही हूँ या जिंदगी को उतर रही हूँ मैं। हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, लफ्ज़ बनकर पिघल रही हूँ मैं, लफ्ज़ बनकर।

से स्वागत करते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने में। नमस्कार, गुड इवनिंग श्रोताओं, मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नरानिया। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। उस फिल्मकार था जिन्होंने भारतीय सिनेमा को परिवार, रिश्तों और संगीत की खूबसूरत सौगात दी। राजकुमार बरजात्या जी की फिल्मों की गर्माहट आज भी हर दिल को अपनेपन का एहसास कराती है और आज तराने नए पुराने कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं उनकी फिल्मों की वही सदाबहार थी। हम साथ साथ हैं इस फिल्म से इस गीत को लिखा है आर किरण ने। अल्पायाग में कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और हरिहरन

सभी आपकी मेहनत से हरिहरन, उदित नारायण, अनुराधा पोडवाल, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म का नाम हम साथ साथ हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म गौरी से। रवि के संगीत से सजा गीत आर कृष्णा ने इस गीत की बोल लिखी है और आवाज है लता मंगेशकर की।

अपने गीत सुना। वीडियो आपको सुनवाती है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अगला गीत प्रेम कहानी फिल्म से आनंद बख्शी के बोल में संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे।

की आवाज़ें धुनों की अनूठी परवाज़ सुनहरे गानों का अंदाज आज की सुबह को बनाए खास भूले बिछरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विचार की आहाजरी। गीतकारों संगीतकार रविंद्र जैन और फिल्म का नाम है विवाह।

उनके लिए है। पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए और प्रोग्राम को सुनने देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, उन सबके नाम उनके ग्राउंड पे है, क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।

Elles sont utilisées sur le champ de l'or, les arêtes,

सरकार और सरकारी योजनाओं के बाद आर्थिक क्षेत्र को

पहुंचे राजधर में पहुंचे मई 2026 तक स्वगणना हेतु आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए

Thank you.

இவர்கள் வர்த்தமான சந்தை வாழ்க்கை தினங்களா अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं यह पोर्टल 15 मई 2026 अक्टूबर हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के पुनर्भूष और सुधिक निर्माण के लिए हमने अपने

सफलता को और जीवन के खूबसूरत पलों को कभी विदाई कर दी। पहला

ऐसा संभव नहीं हो सकता। अपने द्वारा

घोषणा के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन

todo dia.

फोरम की सरकार ने शहरी क्षेत्र के उन लोगों के बारे में भी गंभीरता से सोचा और उनको राहत देने का प्रयास किया। तो जनता से अपील करना चाहूंगा कि अनुमानित झारखंड के 7 लाख ऐसे घर जो अनियमित हैं वो इस योजना का लाभ लें। जो नागरिक शुल्क देकर अपने अनियमित भवन का नियमितीकरण करना चाहते हैं, राज्य सरकार उनके मन संबंधी सुरक्षा करें।

सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल डीजल एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं। सम्मान

कि हम शुक्रिया अदा करते हैं उन्होंने हमारा ये विकल्प उन्होंने दिया है। और आज की जो परीक्षा है, मैं इस बात का ही कह सकते हूँ कि आज से आप बताए, लेकिन हमें जो विश्वास है वो सत्य जीत होती है और होगी।

God is

अभी आपने सुना गायक कलाकार गीतकार और संगीतकार कैलाश खेर थे। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं सदा सुहागन फिल्म से आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत की सजा गीत गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर आवाज लता मंगेशकर जी।

0: साल जयपुर में थिएटर किया और एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का टर्निंग दौर था। टीम का जवाब भी जिन्होंने मुझे इससे चरण से इन चीज़ों को हमार दे और साकार करने का अवसर दिया। मेरे पढ़ाई की उड़ान बाकी पर इंडिया में जाना थी और डिजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गया, किसी चार के साथ नहीं हुआ।
1: आपके मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे

frases de Suárez. Hay ज्यादा खुश रहते हैं. अगला जी, इस गीत के बोलो को लिखा है इंदी भर ने और बप्पू लहरी का संगीत है आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में. फिल्म का नाम मुद्दत

अब आपको सुनवाते हैं सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजों में। मजनू सुल्तानपुरी का लिखा, बसु मनोहरी का, संजीव बटिया जी।

वादा करो साथ, वादा करो जाना, ये आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति फिल्म आनंद से। गायिका लता मंगेशकर है, गुलजार की लिखी बोल,

लता मंगेशकर ने गाया। गुलजार की बोल थी सलिल चौधरी का संगीत और इसी गीत के साथ कार्यक्रम जयमाला अब यहीं संपन्न होता है।

0: Italy.
1: दोस्तों, इस संगीत कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उभरते गिटार वादक अनिकेत गुंडेवार, जो गिटार पर शास्त्रीय संगीत बजाते हैं। अनिकेत जी, जानना चाहेंगे सबसे पहला मंच पर जाने का मौका कब मिला आपको?
2: मंच पर जाने

0: इसके अलावा किसी ने आप प्रस्तुतिकरण के लिए बुलाया हो या किसी ग्रुप के साथ किसी बैंड के साथ जुड़ने का मौका मिला?
1: जो एकदम पहले का जो प्रोमिनेंट मुझको एक

0: सिचुएशन में एक बड़ी बात थी क्योंकि मैं बहुत बहुत पहले पहले था, मतलब मैं चार पाँच साल ये हुए
1: वहाँ क्या बजाने के लिए मिला आपको, मतलब क्या बजाने के लिए कहा गया आपसे?
0: वहाँ पर वही है कि क्लासिकल म्यूजिक में काफी इम्प्रॉम्प्टू चीजें काफी होती है
1: जी जी,
0: तो वो सीखने को काफी मिला। तो हम एक कुछ फ्यूजन कॉम्पोजिशन की

difficult performance, so

0: सोच रहा है
1: जी,
0: तो उससे काफी सीखने को मिलता है।
1: यही अपनी सोच रखने का मौका आपको मिलता है जब आप अकेले बजा रहे हैं और कुछ काम,

0: चीज़ प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसमें हम किन कलाकारों को सुनते हैं, किन की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है और बहुत इंस्पायरिंग होती है ये रिकॉर्डिंग। आप किसका नाम लेना चाहेंगे जहाँ पे गिटार की बात है?
1: अच्छा, जहाँ तक गिटार की बात है तो दो ऐसे गाने हुए हैं हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो गिटार के, एक तो पंडित बिजभूषण का
0: जी बिल्कुल
1: हवाईन गिटार जो उन्होंने बजाई था, और फिर उसी को लेके जो आगे लेके गए वही तो उसको पंडित सोमन भट्टी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े नाम है,
1: बहुत बड़े नाम है
0: और इनका योगदान बहुत विशाल है,
1: बहुत बहुत बहुत। और दोनों के साइज भी इतने अलग है कि वो जब आप सुनते हो दोनों को म्यूजिक एकदम कुछ अलग ही चीज़ मतलब सुनने को मिलती है।
0: जी, कभी ऐसा नहीं लगा कि एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में करियर शायद कुछ और होता और जीवन कुछ किसी और तरह का होता?
1: सर नहीं लगा मुझे एक्चुअली,
0: क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक अलग क्षेत्र में आपने की है और अब आप पूरी तरह से कलाकार के रूप में अपना करियर बना रहे
1: हैं। नहीं, क्योंकि एक चीज ऐसी थी कि ऐसा नहीं लगा कि अच्छा अगर मतलब वो मोटिवेशन मटेरियल

0: falsafana सोच है फिलोसॉफिकल बहुत अच्छे
1: क्या लगता है आपको और क्या होना चाहिए आपकी जिंदगी में कलाकार के रूप में आपकी अपेक्षाएं क्या है
0: मुझे जितना हो सके ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने के लिए मिलना चाहिए तो उतना ही है बाकी तो वैसे तो जो जो सीखने में जो मजा आता है वो तो आता ही है वो कंटिन्यूस एक प्रोसेस चल रहा होता है जब आपकी थॉट इम्प्रूव होते रहती है जो जो रियल में फिर एक तो मैकेनिकल रियल होता है एक पॉइंट के बाद वो

0: रहती थी। एक जमाना था जब लाइव शो लोग देखने जाते थे और कुछ होता नहीं था, रेडियो पे सुनते थे क्लासिकल म्यूजिक। बाद में दूरदर्शन आया, उसके बाद सैटेलाइट चैनल्स आए, बहुत सारे ऑप्शन थे लोगों के पास देखने के लिए। अब तो इंटरनेट के जरिए जब चाहे जो चाहे हम देख सुन सकते हैं। तो आपको क्या फर्क मालूम पड़ता है अब, और इसकी बदली हुई ऑडियंस और खासतौर से यंग जनरेशन, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे मंच पर?
1: क्या करना चाहूंगा,
0: क्योंकि उनकी सोच की उनको अच्छा लगता है उनकी पसंद नापसंद को देखते हुए।
1: तो अभी एक्चुअली हो कैसे गए, और इससे एक्चुअली हम एज एन आर्टिस्ट भी काफी गुजरते हैं, क्योंकि हम लोग एज अ रेफरेंस मटेरियल सुन रहे होते हैं। तो हम लोग उस साल अमीर खान जी का सुन रहे होते हैं, भीमसेन जोशी, वो टाइम का जो म्यूजिक था जब बहुत ज्यादा खेला था, एक डेढ़ घंटा दो घंटा गाते थे, और ये तो सिर्फ रिकॉर्डिंग था, मतलब ऐसा तो सुनने के तीन चार घंटे
0: बिल्कुल बिल्कुल देखिए रात तीन तीन चार

Sí.

0: थोड़ा पास भी होता है, तो अभी अगर मेरे पास आधे घंटे का प्रोजेक्ट है तो मैं आराम बहुत नहीं कर सकता हूँ, और ऑडियंस भी उतना आराम फोकस भी नहीं करती है, तो उसके बाद फोकस शिफ्ट होने लगता है। तो फिर आपको उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा
1: अपने प्रेजेंटेशन को डिजाइन करना पड़ता है,
0: प्रेजेंटेशन को थोड़ा मॉडिफाई भी करना पड़ता है, थोड़ा सा चेंज देख आपको दिख रहा होता है कि अच्छा अभी ऑडियंस नहीं है, पकड़ में नहीं, अभी थोड़ा इंटरेस्ट हो गया है रिकॉर्ड, तो फिर आपको थोड़ा करना पड़ता है, अच्छा अभी अच्छा लग रहा है तो फिर इस तरह से हो जाता है।
1: कभी ऐसा हुआ होगा कि आप मंच पर है, आपने शुरू किया क्लासिकल म्यूजिक मगर सामने ऑडियंस शायद कुछ और सुनना चाहती है?
0: नहीं, लेकिन अभी आप मंच पर जब बुलाया जाता है तो क्लासिकल म्यूजिक के लिए बुलाया जाता है, तो तब एक बात होती है कि आप प्रेजेंटेशन थोड़ा मॉडिफाई करो ताकि आप ऑडियंस को कैप्चर कर पाओ। और एक बात होती है उसका कोई पॉइंट नहीं होता, आप जितना प्योर रख सकते हो क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट में क्लासिकल म्यूजिक प्योर होना चाहिए।
1: बिल्कुल, वो तो बात है,
0: और उसी के अंदर काफी स्कोप है आपको डिजाइन करने के लिए। क्लासिकल म्यूजिक शुरू बहुत लो टेम्पो से होता है और जाती
1: और आपके अब तक 15-16 सालों से आप सीख रहे हैं, बहुत से राग अब तक आपके रियाज में आ चुके होंगे, कौन सा राग आपको फेवरेट लगता है अपना?
0: ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, ये हर 2-3 महीने में फोकस ही चेंज होता है, जैसे अभी राग में थोड़ा और
1: अच्छा
0: फिर नया राग शुरू हो जाता है, तो हम लोग कुछ कुछ ऐसे राग होते हैं जो हम

0: मेरे गुरु जी भाई ने तो मैं भजन सुन सुन के सीख रहा था और थोड़े टाइम के बाद ऐसा लगने लगा कि अरे स्ट्रेस के वजह से मुझको वो बूझने का ही नहीं रही जो वायलिन का इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट है। तो मैं एक्चुअली ऑनलाइन ढूंढने लग गया और मुझे ये फ्लाइट मेकर है जो यूएस में है
1: अच्छा
0: वो ये मैंने कैसे कर दिया तो उनको आपको रिंग फिंगर प्रेसाइज देना होता है और फिर वो
1: बना करके
0: आता है। तो उनसे मैंने ऑर्डर किया और फिर मैंने सीखने लग गया। तो बेसिकली ये

0: vai ser o seu oponente, a minha razão.
1: तो अब उस धुन की तरफ बढ़ते हैं जो आपने खुद बनाई हुई उसकी झलक हमें सुनाएं।

दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी लेकर हाजिर होंगे अगले सप्ताह विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री सामले। अब दीजिए इजाजत।

Donc, il n'y a que la chance, c'est l'humain, chacun peut avoir.

0: doing down here now?
1: What? What?
0: What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What?
1: What?
0: What? What? What? What? What? हम दोनों से बहुत प्रसन्न है। वरदान देने आई थी।
1: वरदान?
0: हाँ, अरे वो किराए जी पता है क्या? मैं क्या मांगूंगा उनसे?
1: अरे भैया, इतनी तेज तो रोशनी निकल रही थी उनके बदन से, मुझे तो मुझे आ गई।
0: अरे मेरा भी तो यही हाल था भैया, किसी को घबराहट के मारे में कुछ मांग ही ना पाया। मुझे पता क्या मांगू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया।
1: तो मैं बताऊं?
0: और सर जब भी से बोल
1: सुनो, तुम कहते थे ना मेरे कानों में झुन झुन करने वाला चांदी का झुमका बहुत अच्छा लगेगा, तो मांग लो झुमका।
0: ओहो, तू सब भी सोचेगी अपने झुमके की सोचेगी। अरे इतनी बड़ी देरी से इतनी छोटी सी झुमका तो मैं खुद भी खरीद सकता हूँ तेरे लिए।
1: हाँ हाँ, वो तो मैं 5 साल से देख ही रही हूँ, जब भी कहती हूँ तो कह देती हूँ कुछ नहीं है, और आज तेरी भी खुद देने आई गई है और तुम मांगना ही नहीं चाहते। मैं खुद जानती हूँ तुम मुझे मेरा झुमका लाना ही नहीं चाहते।
0: अरे तू समझती क्यों नहीं, देवी जी वरदान देने रोज रोज तो आएंगे नहीं,

0: que vous parlez vous.
1: Se je tomber de tout ce haut d'ailleurs, je vais faire un yard d'ailleurs. Et je vais me faire un petit peu de temps qui est là. Moi, je vais कलेक्टर साहब यहाँ पे हार बांध के खड़े हैं
2: और कलेक्टर साहब ब्रिटिश गाड़ी क्या चल रहा है। अरे हर गली फूफू करने वाला वो थानेदार बेचारा कलेक्टर साहब के सामने जैसे भीगी बिल्ली बना हुआ है। अरे सुन तो, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि देवी जी से कहूँ, इससे देवी जी मुझे कलेक्टर साहब बना दो, फिर तो थानेदार भी मुझ जैसे गरीब को सलाम ठोकेंगे। और मेरी दुनिया मेरी दुनिया रानी की तरह रहेगी।
0: और मेरे सोने के झुमके,
2: अरे धनिया झुमके तो झुमके, मैं तेरी सोने का चंदर आ ले तो

0: それに見えてないな。それは目立とうんだよ。振り込められない。
1: あとはそうしてみて。
0: そうじゃん。

0: Baby Jedi?
1: Not this Jedi, Uncle Baby Mom. I don't know what to make of that yet. That is God, but what do you mean, Zedo? Shanti and Santos got one, Zedo, baby. How to put me exactly with it?
0: Baby, no.
1: Baby, see? Baby, ma. वो तो बंगला की विदेश जवान राज और राजा महाराजा की बातें सोच सोच के हम दोनों सारी रात सो नहीं सके। आंखों से नींद उड़ गई। सोचने से यह हाल है कि तो सब कुछ भूल जाने पर क्या होगा और कितनी रातों की नींद हो जाएगी। नहीं देवी माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें अपनी रूसी सूखी और ये आसमान की छत खबूत है। सोने का वो बंद पिंजरा मिलना चाहिए कि कितनी बारों के भीतर हम इंसान खो जाए, हमारी नींद उड़ जाए, हमारा सुख चैन लुट जाए।

Ooh.

Eu não sei.

सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म धड़कन से कुमार सानू की आवाज।

कार्यक्रम चित्र लोग आइए अब आपको सुनवाते हैं कसूर फिल्म का गीत। उदित नारायण अल्फा याग्निक का गाया, चन्नी सिनिक के बोल है, धुन बनाई है नदीम शवन।

ईश्वरों में अच्छा चिंता की विकास सुन रहे थे। जमीन ने खीत की बोली की थी, धुन बनाई थी नदी शवर ने,

खत्म हुआ और हम फिर से लौट आए हैं कार्यक्रम के त्रिलोक लेकर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं की आवाजों में निदा फाजली का लिखा आदेश श्रीवास्तव का संगीत प्रक्रिया।

घोषाल, मधुश्री, बीला शिंदे और कलापनी कोमाकली की आवाजों में। अगला गीत गली में चांद निकला, जश्न फिल्म से अलका याग्निक की आवाजों में।

लता मंगेशकर का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में लुधियानवी ने राजेश रोशन के संगीत से सजा फिल्म काला पत्थर का गीत।

0: रहता है, सूरज जो है हमारे सुनने वालों के लिए अपनी बेहतरीन बातें और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आपको हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसमेंट हैं, उन सबके नाम उनके दौर पे क्यों है, क्योंकि उनको प्यार है। अठारह मई शाम 7:45 बजे पर
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर

Spirit, Duch Svätý, Korpus, Ministerstvo Vátov si sedá.

0: कम 10 साल जयपुर में जिक्र किया तो एक उलटपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का टर्निंग दौर था। टीम का जॉब भी जिसने मुझे अच्छे तरह से इन चीज़ों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया। मेरे पढ़ा जारी कितनी उड़ान बाकी परिंदे उड़ान बाकी और दिग्विजय म्यूजिक के साथ शुरू हो गए कि किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आपके मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई

किया तो मैं मधु सुल्तान प्रीकर का जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत सजा और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके लिए यही संपन्न होता है।

Pues un carnet, un sitio privado.

for about 15 minutes.

चिंता इसमें हुई थी जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रही हैं। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शन के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में सिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म

संसार के रूप में प्रसिद्ध है। बच्चा के परिवार जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं अभिनय गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था तारा चंद बड़जात्या।

के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसे उनके पुत्र सूरज बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई यह फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा

अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। ये फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दर्शक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में छह स्क्रीन पर कनाडा के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित सूची से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शन सिनेमाटोग्राफी कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर

सर टीम की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ, जो चित्तौड़ पर आधारित फिल्म थी और फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म को

जलाधार से शाहिद कपूर और अमृता राव रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सगाई से लेकर शादी तक के सफर की कहानी को

फिल्म बनाई पिछले आई थी 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

देखन में राष्ट्रीय फिल्म की प्रसिद्ध फिल्म पक्षियों के रूपों से इसके को लाई जाना पहचाना, जिसमें सुखी और रंजिता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म, ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म के

2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राष्ट्रीय प्रोडक्शन का

मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को

किताब सुनने से आवाज भी हो जाएंगे। गुलशन में उनका आना कुछ ऐसा ही होता है, फूलों में खुशबू, शाखों से पराना होता

होता है कि फिर लौट आएंगे, उनके शोक नजरों पर निगाह करके बैठ जाएंगे। शुक्र कि उनका इधर ही आना हुआ।

आंखों से दिखने हैं लपेटे। ये परेशानियाँ वो आंखों को झुकाने की अदा, अपने आप को खुद से ही छुपाने की अदा। यूँ लगता है कि आज ये दिल सुन न पाएगा,